छैया ये सतगुरु नदर करे आई रिसीव ऑल द जॉयज ऑफ लाइफ इफ हिम आई रिसीव एंड माई लाइफ हिज प्रेशियस गिफ्ट

दुई गुर साजे करासन रिठो चाओ, दाता करताप तू तुस्ते वे करे पसाओ, तू जानो ही सबसे दिल से जिंद को कार्यासन रिठो चाओ।

0: इंसान इस गल की खोज ना कर पैदा कितों होया सा कितों पैदाइश तेरी है एक नापाक पानी दे कतरे तो वजूद ऐदा दा खूबसूरत बनाई बैठा है ते वजूद करके तू अपने शीशे मोहरे जो खलो जांदा ते तेरा चेते नहीं करदा हटन नू कदी वेख्या कर जिसने तेनू खूबसूरती दिती है पे ओ किड्डा खूबसूरत होवे ते कित्थों तू पैदा होया बंदे खोज दिल हर रोज
1: करीमल कमाल है
0: करीमल कमाल है गुरु गोबिंद सिंह जी कहंदे ने ओ कैसा है करीमल कमाल है कि हुस्नल जमाल है ओ खूबसूरती दा मुजस्मा ही है बस दी पर ए सोचिया कर कित्थों उपजे दूजी गल कह रहे तीसरी गल जिंदगी है नाटक जेड़ा ना इट इज जस्ट गोइंग टू बी फिनिश्ड ये तो खत्म होने वाला ही है और तू हाले अपना आप सवारी जांदा इसे कम ते सारा दिन वेस्ट ना कर दिया ना ना ना ना ये सवाल अपने मन ते करके कितों उपजे कह रहे के मान समावे बंदे खोज दिल हर जो तू ये खोजेगा ढूंढेगा तलाश करेगा ना फिर परेशानी मां दुनिया में बहुत ही देर नहीं रहना मेरे आदर योग मास्टर जी ने सवेरे अरदास तो बाद अपना बचने ही इथो आरंभ किया कि संसार नाशवंत है मैनू उस वेले याद आया सुनना जी पंजाबी विच ए जग सराए मुसाफरां दी इत्थे जोर वाले कई आ गए ए जग सराए मुसाफरां दी इत्थे जोर वाले कई आ गए शदाद नमरूद फरून जाए बे दावा बन खुदा कहा गए अकबर शाह जाए विच दिल्ली दे जी फेरी वांग बन जा रहे हैं पा गए शाह मुहम्मदा रहेगा रब सच्चा वाजे कूड़ दे कई बजा शाह मुहम्मदा रब और रब दे वरसा है भगवान भगवंत दे वरसाए है अकाल पुरख दिया जोता संभाली फिरन वाले ए महापुरश क्योंकि दो चीजा रेंदिया संसार विच गुरु ग्रंथ साहिब जी कहंदे ने

समाप्ति है शासन में, पर मेरा चित करता है कि ए सत्रां ते तुहानू समझ आ गई, जेहन विच बैठ गई हां, तुसी कृपा करके हौली हौली इस दे नाल ही

सतगियो गुरु रामदास आमतः उर्वरा गुरु रामदास आमतः उर्वरा जहां मान अकली में सिद्ध को सभा जहां मान अकली में सिद्ध को सभा

महबूबे खिदमत अच्छे गाय के सन्माने निमान निकाने रतान संत श्री गुरु संत हजूरी देकर बड़ी अच्छी के दिन आपने बेटी गुरु शासन जो आप जी सरकार के काबिल हो जो आप जी जिंदगी दे इतने अहम करे मसलियां के बीचों आप जी ने समा कटिया जो आप जी ने सोच लिया कि आप गुरु दरबार में जाना है एक गल नाल ही आज हो गई सब कुछ टूर टैंडर आगे हो गई थे अच्छा जी ने आप जी बड़े सुंदर अंदाज के नाल उस संगीत की गलत गलत की हम सच संजोग जब बाद लोग बैठे संतन जी

सब सबको सबको आखे अपना जसना ही सोच कदिया पीता आपो अपना पिलेखा संडिया यार नहीं आज जग।